0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सोमवार व्रत पूजा। ओम शुक्लांबरतरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो वशान्तये।

अयने ऋतौ मासे पक्षे सुबतिथौ इन्दुवासरयुक्तायां नक्षत्रयुक्तायां शुभतिथौ अस्माकं सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सांब परमेश्वर प्रसाद सिद्ध्यर्थं सोमवार पुण्यकाले सांब परमेश्वर पूजां करिष्ये। कलश पूजै कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्र समाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुधरा ऋग्वेदोत यजुर्वेदस्थ सामवेदोऽप्यथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बु समा

ॐ नमः ॐ त्रिपुरांतकाय नमः ॐ वृषांकाय नमः ॐ वृषभारूढाय नमः ॐ भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः ॐ सामप्रियाय नमः ॐ स्वरमयाय नमः ॐ त्रयीमूर्तये नमः ॐ अनीश्वराय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ हविषे नमः ॐ यज्ञमयाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॐ दुर्दर्शाय नमः ॐ गिरीशाय नमः ॐ गिरिशाय नमः ॐ अनघाय नमः ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः ॐ भर्गाय नमः ॐ गिरिधन्वने नमः ॐ गिरिप्रियाय नमः ॐ कृत्तिवाससे नमः ॐ पुरारातये नमः ॐ भगवते नमः ॐ प्रमतादिभाय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ॐ जगत्व्यापिने नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ व्योमकेशाय नमः ॐ महासेनजनकाय नमः ॐ चारुविक्रमाय नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ भूतपतये नमः ॐ स्थाणवे नमः ॐ अहिर्बुद्ध्याय नमः ॐ दिगंबराय नमः ॐ अष्टमूर्तये नमः ॐ अनेकात्मने नमः ॐ सात्विकाय नमः ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ खंडपरशवे नमः ॐ अजाय नमः ॐ पाशविमोचकाय नमः ॐ मृढाय नमः ॐ पशुपतये नमः ॐ देवाय नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ अव्ययाय

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
2: वेद पाठाः यजुर्वेद संहिता पाठः।
3: ओम इषेत्वोर्जेत्वा वायवस्थो पायवस्थ देवो वस्सविता प्रार्पयतु। श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्निया देव भागमोर्जस्वतेः पयस्वतेः प्रजावतीः। अनमेवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशिगुंसो रुद्रस्य।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

वस्तर दिवे दिवे दिवे दिवे दोषा वस्तर धिया दिवे दिवे इति दिवे दिवे दोषा वस्तर धिया धिया दोषा वस्तर दोषा वस्तर धिया वयम वयम धिया दोषा वस्तर दोषा वस्तर धिया वयम दोषा वस्तरिति दोषा वस्तः धिया वयम वयम धिया धिया वयम वयमिति वयम नमो भरन्तो भरन्तो नमो नमो भरन्त एमसि मस्या भरन्तो नमो नमो भरन्त एमसि भरन्त एमसि मस्या भरन्तो भरन्त एमसि एमसि इमसीति इमसि राज